0: ओके देख मालो को विंतिस जने माका मुझी का फुरक ने बे पुसी बेलन सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इतो बा कंटिन्यू ना फाटिंग इतो निया प्रोग्राम हे बेलन जस्टिंग हने सन जुवेंटुडी मेहे साइडा माका इतो बो चिरा इहा होरे कंट्रोवी बा ना साउंड नो फो अपोयु बा डेजेनवोलिमेंटो
1: लॉस दुनी काता इतो जुवेंटुडी रे ने जुवेंटुडी फोन एरा मिलेनियल ने इतो ने मग जुवेंटुडी तंबाने माका इतो हने सन राम फोन otas fon bana sound fon ida ne ida juventudi mustengi hanoi ida ke fon la osona atu continua ba hanoi ida ke sira halo la kondiso situ

0: कि एक समय तम बने दे बाद में जो माता से रही तक इन फल नो नियो बोले अफेर का जो रहता साउदी बाकुम्ला से नहीं ना पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.